0: お前ね、文字文字文字おでたおってやれ、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃち
1: ゃ。प्यार से दे रहे हैं, रख लो।
0: देख देख देख। अरे और ये बाप रे बाप, इस स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो। तू जारी भी क्या लिखवा ले तू का? अरे अरे ए ए
1: आ जिगर पलट।

श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

खाए नि सब खाए नि रक्सी भन्या रक्सी मिठा के रक्सी सबै होटल खाए नि तुकी सुरु सुरुमा

पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले रात को 8 बजे।